श्रीदक्षिणाभिमुख सन्मुख सर्ववन्द्य मायांधकार परिहार विनूत्न विंध्य भक्ताश्च ते चरण पद्म दिदृक्ष मोहि कोटप्पकोंड जगदीश्वर सुप्रभातम्। सर्वेश भूमि पवनाग्नि जलांतरिक्ष लिंग स्वरूप हृदयांबुज।

इत्याभिषेक जल निर्मल चिद्विलासौ श्री बिल्वपत्र विहितौ हरित प्रकाशौ भस्म प्रभावि भवरंजित भाग्य दीपौ कूटेश्वरस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये सम्पूर्ण सत्य शिव सुंदर सार्वभौमौ विश्वोत्सवौ विकृत

ज्ञानस्वरूप भगवन् सच्चिदानन्द सागर श्री मेधा दक्षिणामूर्ते त्रिकूटेश्वर मङ्गलम् मन्दस्वित महाभूष महर्षीन्द्र मनोहर श्री मेधा दक्षिणामूर्ते त्रिकूटेश्वर मङ्गलम् तमोगुण समुद्रावज्ञानमु